कै पात जाके दसोए सदा निहाल मेरे मन मेरे करता के काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को हीण नाही को सूरा जित को लाया तिथि लागा सो सेवक नानक जित भागा गौड़ी महल्ला पंजा बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी त्यों देव सागत ना बेचारी एक निमक जाओ सिमरन बंजिया कोट दिन लाख सदा तृतीया राव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन विश्राम वास बिन सिमरन पैकु कर काम साकत बेसुआ पूत ने नाम बिन सिमरन जैसे सिंह छतारा बोले कुर साकत मुकारा बिन सिमरन गर्दब के न्याय स्वागत थान पृष्ठ फिराही बिन सिमरन को कर हर काया स्वागत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काते स्वागत नीच तस कुल नहीं जाते इस जिस पया कृपाल तिस सत संग मिलाया को नान गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजमा गुर के बचन मोहे परम गत पाए गुर पूरे मेरे पैज रखाए गुर के बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया था राव गुर के बचन सुन रसन बखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा बड़ परताप गुर के बचन मिट्यो मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्राह्मण गुर के वचन किनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के वचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के वचन पाया नाव निद जिन जिन किनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटी जम की फासा गुर के वचन जागया मेरा कर्म गो नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिसको तिस गुरु को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सदगुरु मेरी रास राव गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के जन तोये तोये पीवा गुरु की रेण नित मजन करो जन्म जन्म की होमे मल हरो तिस गुरु को चलावो पाखा महागंते हाथ दे राखा तिस गुरु के ग्रह टोवो पानी जिस गुरु तिया कल गत जानी तिस गुरु के ग्रह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुरमुख दीना दियो अपना दासरा पे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार काल कलेश पै परम दुख लाथा को नानक मेरा गुरु समराथा गौड़ी महला पंजवा मेरे मेरे गोविंद अपना नाम देहो ना बिना त्रिग त्रिग असने हो रहो ना बिना जो पैरे खाए जो कूकर जूठन में पाए ना बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अन काज बिन जाय झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लाभे कोट कर्म करतो नरक जावे।

हारिया। मैं पायो सर्व निदान अखत कथारिय हर दरगा सुबावंत बाल उडारिया जन नानक लद्दा रतना मोल्य पारिया गुरु सेवा पव जल तरिय कहो पुकारिया। गौड़ी महला पंजमा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप दे बार एक मंगो रहाओ। ताज हो मैं गुरु ज्ञान पजो मेरे संगत दुर कर्म लिखियो जो दिस सो संग ना गए हो साखत मुड़ लगे पाचो मोए हो। मोहर नाम सदा रब रहे हो कोट में देखने गुरमुख लहे हो हर संतन कर नमो नमो नौ निध पावे अतुल सुख ज्ञान।

पुजा पायो पाओ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हरनायो अनाथ अनाथ कृपाल दिन समरथ संत उठायो निर्गुण हरे के बिनती देहो दर्श हर रायो नानक शरण तो हरि ठाकुर सेवक द्वार आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग विख्या के भोगा इन संगांत न जाने हों संचो हों खाटता सगली अवध बिहानी राव हों सूरा प्रधान हों को नाही मुझे समानी।

दुख पाए। फिर छोड़े अड़ी दियो कमण मिलावे, रस प्रेम मिली दियो, शब्द सुहावे, शब्द सुहावे तापत पावे, दीप के देव दियारे, सुन सखी सहेली साच सुहेली साच।

चंदनो तिस बाज बखर कोय ना सुजै नाम ले बो खिन खिनो परख लेखा नजर साची करम पूरे पाया नानक नाम हरस मीठा गुर पूरे सच पाया।

गुरबिन मैल ना पाइए। जो गुर कह सोई पर खिजाए ते सुनाए अगन बुझाइए। हर सा चा सोई तिस बिन बिन कोई बिन सेविया सुख ना पाए।

ज्यों मिला तिवे मिलाई है। आपे मेरे सुखदाता आप मिलया करया, इना ने कामण सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा कामण हर रस बेदी दियो, हर कैसा सुभाए मन मोहन मोलिया दियो। दुविधा सह समाए दुविधा सह समाए, कामण वर पाए गुरमति रंग लाए। ए हो शरीर कूड़ को सत भरिया, गल तई पाप कमाए। गुरमुख भगत जत सहाय तुन उपजाए, बिन भगति मैल न जाए। नानक कामण फिर प्यारे विचों आप गवाए, कामण फिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे। अंदर दुख निवारे अंतर मैल फिर रावे, कामण गुरमति विचारे। अमृत नाम पिया दिन राति दुविधा मार निवारे, नानक सच मिले सुहा।

परमानंद नाम वसाय। माया का परमानंद बिरा दियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सदगुरु पाए। मर्म के आप गणाए हर कह चाकर सदा सुहेले गुरु चरणी चलाए। जिसनो हर दियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन डगला गुरु मख आप बजाए। रा गौड़ी चंद महला पंजमा क्यों

विदाता एक श्री तर क्यों मिला तुझे ओढ़िया कर करे सेवा सी स्वचरण मन आस दर्शन बाणिया सास सास न करी विसरे पाल मूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे

मान्यता है काल इकटा कर जन साव कल तारिया तुद बचन गुर के वास किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक प्याज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत त्यावै दर्श त्याना।

तारे सब किस काल कंडकलो मोनासे जी जा कैस प्रवस सो प्रसन्न देवा सबल सेवा पै पूरन काला बिरवंत नानक जपन जबत दीन दयाला गौड़ी महला पंजमा सुन सकिए मरुदम कर।

बंधव सोदरा गुरुदेव दातार नाम उपदेश गुरुदेव मन निरोतरा गुरुदेव चात सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पार सुपर सुपरा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजना परंपरा गुरुदेव कर्ता सा पापरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेवा जुगा जुग गुरुदेव मंत्र जप उदरा गुरुदेव संगत ब्रह्मेल कर कृपा मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक नमस्कार सोलोक।

कर कृपा दे आप दिवाई गणती गणी नहीं को छूट काचे गा गर सर प्रपुट सो जीव जय जीव जपया प्रगट पै नानक ने छपया सुरो उचित।

कृपा करो भगवंत साठ सियान बहुचतराय सुंदर की मंटे गाय चार के पुत्रे परम गत पाए नाने जाको संत स्वाय स्वरोक जोर जुलम फूल कनो का छे दे बेकार ओबन बंधन पर।

ठाठ परि संत संग बसिया अमृत नाम तहा जी रसिया। ठाकुर अपने जो जन पाया नानकवा का मन शीतलाया। सरोग डंडौत बंदन कबार स

कहूं सिमट पियो शंकर अकैठा सिगरी सरठ दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुमकारो सिख अवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठ बात उत्पाता सकल मलेश करो रण घाता जे आस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत होया मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो

दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तमें सरण तिहारी आप हाथ दे हो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखयन को छय करता।

एक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब वो भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ का गहे तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ का गहे तुहारो द्वार

पौड़ी तिथै तू समर्थ जिथै कोय नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुनका जमके दूत नाय तेरा छड़ जाहे भौजल बिखम असगाह गुर सबदी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कलमह एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होबा सिबत खसम दे नूर अरसों।

मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कन कोई न जाने तुमरा अंत सगल समगरी तुम रे सूत्र तारी तुम ते हो सु तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलना जी वाहिगुरु।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की। अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जी दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जी दे पावन सरूप दे सुखासन दी सेवा हुई है। सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक दी खिमा बख्शना। आप दे भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना। आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्ना मिले आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पाए, अंधकूप महाकूर ते बहां पकड़ गुर काढ़ लिए, निरपो पै सगल पौ मिटिया, राखे राखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सब सगल सवारे, गुणन धान साहे मन मेला, शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पंजमा, तू बिसरे ता सब को लागू, चीता वैता सेवा, अवर ना कोई दूजा सुज है, साचे अलख पेवा, चीता वैता सदा दे अल्लाह, लोगन क्या बेचारे, बुला बुरा पला को किसनु कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ, तेरी टेक तेरा आधार, हाथ दे तू राखे, जिस जन ऊपर तेरी कृपा, तिसको बिप ना को पाख है, ओह सुख ओहा वड़ियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरबाना।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

राम चितेरे। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी। सच

तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सर्व समग्री, तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार पर छोड़ कै लागे आन सुहाए, नानक कहो न सी जई बिन नावे पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण विखुड़ गुआवे। एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा को कां करे। जिस

ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अवन त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्वण मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस वट भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को साधेद, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखियर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधा,

उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारे नानक होआ पर सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत नंजन दर्स पर तिरया रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन ना सुने काउ की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विखिया पर हरे मन की वासना मनते टरे इंद्री जत पंच दोग ते रहत नान कोट में देखो ऐसा परस वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत होवे न कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काऊ फल की इच्छा नहीं वासे केवल भगत कीर्तन संग राचे मंत्रे अंतर सुनन गोपाल सावि उपर होवत कृपाल आप दृढ़े अवरा नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल दयागे दुष्का संग मनते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पाप अमल खोवे तुजती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नतनीत मंत्र ने अर्पे विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म में सोधे।

सदानंद नहीं वियोग तैसा स्वम तैसी स्मृति तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक हो प्रकिय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जित कर राखे तैसा तिन्नाओ आपे करण करावन जोग प्रभावे सोई पुनः पसरे हो आप हुए अंत तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारावार नानक रचना प्रवृचि बावदे अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट चार ब्योहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तवी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कवका विचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट भेग आत्म निकोर कई कोट पर धर्म कुहरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया सरमाए कई कोट पर देश प्रमाए जिज दिलाओ तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पौन पानी वे संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सचिर सू नखत्र कई कोट देव दान मिंद्र सर छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज तम सात कई कोट वेद प्राण सिमरतर सात कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर सुन थीवे कई कोट जाके निसाज कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाज सबते नेरे सबूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट भोजोनी फिरे कई कोट बैठती खाए कई कोट गाले थपाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चंद जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कह आते कई कोट भय बैरागी राम नाम संगत निर्वलागी कई कोट प्रभ को खो जानते आत्म में पार बमलांते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको ए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुत कीनो विस्तार कई बार पसरे उपसार सदा सदा एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभते होए ब्रह्मा समाता का अंत न जाने कोए

जिसके कर्तव्य मृत्य जात। मारे ना रखे अपन कोहे सब जिया का रखा सोहे काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबल खुडानी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृते मन तन त्रपिए नाम रतंजन गुरु मुख पाया तिस्के जब नाय दिष्टाया नाम तन नमो रूप रंग नामो सुकर नाम कसंग नाम राजो जम तिरताने मन तन नामे नाम समाने।

न सुजई जे तिस गुण कोए करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विंगास सुनया दुख पाप का नास। सुनया ईश्वर ब्रह्मांड सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया साहत सिमरत

मन कोय मन मार ठाग न पाए मन पास्यों पर गट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन पावे मोह द्वार मन परवारे साधार मन तारे तारे गुर सिख मन नानक पवे न भिख।

भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख भाव, असंख पूजा असंख तप ताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहै उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन

साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े हार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाख खाहे असंख निंदक सिर करहे पहार नानक नीत कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोव असंख कह सिर

साई परिकार तुम सदा सलामत निरंकार। परिय हाथ पैर तन दे पानी धोते तो उतर सुखे।

मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया श्रुति सेवक केते नानके अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़े आनंद।

तवै प्रसाद चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन देह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कहिजय कोड़ इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजय तिर भव महीप सुर नर असुर ने

हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, पजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्य समति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल

काल शांत वह प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्त है जौन पुरखे पार सर्वमान तिरमान देव पेहवा देवदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर।

सामान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पावन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सोख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र तराण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य, के सर्वत्र जापे है, के सर्वत्र थापे है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है,

सुषुप्ते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पौत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माते न जाते न पाते

बेपुहते दो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेपुहते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तवे प्रसाद सवैये। श्रावक सुध समूह सिधान के देख प्रयोग कर योग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधात के संत।

रत दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर ई कैठा, शिगरी सरिष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं।

लीन है कद संयम तोता जाए, मन तो बहु शब्द लागहु हर सिंह रह हो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा जाए।

महाराज जी कहते पूरे सतगुरु नू आराधो भाई, जपो, सब माड़े तो माड़े पाप उन्हां दे फल उन्हां दी मैल जिहड़ी अंदर पई है पिछले हो गए ने जो उन्हूं महाराज जी आपे खत्म कर दिंदे। अगे नू जिन्ना चिर असीं स्टॉप नहीं लांदे रोकदे नहीं उन्ना चिर महाराज जी भी सफाया नहीं करते। जदों असीं ऐन महाराज जी ने कहा ना धर्म दृढ़ हो, धर्म च दृढ़ हो जाने एकदम पक्की लकीर खिंच दिंदे भी मरदे मर जाइए महाराज दे कहे वचन तो एक पैर भी पिछे नहीं पुटना। जेडे शहीद हुंदे आ गुरु के सिख इन्ना क दृढ़ उन्हां नूं करना पैंदा भी जालम जो मर्जी कर लवे एक पैर भी पिछे नहीं पुटना, मारना मार दे और इस तों वध बंदा कर की सकदा। ताही गुरु के सिख बाणी पढ़

महाराज जी कहते दूसरी अवस्था च सतगुरु ते सिख आमो सामने हो जाते आखो सतनाम श्री वाहे भाव नेड़े हो जाते नजदीक हो जाते एक दूजे ते पहला नेड़े नहीं होंगे कई बार कोल आके भी कई दूर होंगे है। गुरु रामदास दे साहबजादे बाबा प्रीति चंद गुरु दे कोल होने दे बावजूद भी दूर रहे। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज लाहौर गए हुए सी दूर होने दे बावजूद भी नजदीक रहे। महाराज जी कहते सिख ते सतगुरु जदों महाराज जी फिर मेहर करते हैं मिला देंदे नेड़े हो जाते आपस निरभौ भै मन होए होमै मैल गवाया बलराम जी कहते हुण निरभौ दुनियावी विषय बकारां दे भै तो रहत हो के सतगुरु दे प्रेम वाले भै दे संयुक्त हो के कहिंदे जदों सिख विचरदा संसार च बाणी पढ़दा सेवा करदा सिमरन करदा कहिंदे महाराज इहो जी कला वरतौंदे है होमै दी मैल उहदी अंदरों कट दिंदे है बस हौली हौली हौली हौली हौली हौली साफ कर दिंदे मन नूं।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठ नंदन प्रथम राग पर वह करहि पंच राग ने संग चरहि।

संदूर सुहाय सर सहिर लार जा संगलाए पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बन मंगलन सुहाय सरस्वान आहे बहनो दगा सरस बसंत कमोदा।

एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चल सब कोए, चंगा नाव रखाई के जस कर जागले।

तिथखंड मंडल वर पांड जेको कथ तायंत नायंत तिथ लो लो आकार जिव जिव तिव तिवकार विख्या विषय कर विचार नाने कथना करडाचार जत बहर तिर सुनियार अरण मत वेद हथियार पौखला गंतवताओ पांडा पाओ मृत चाल कड़िया सब

अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पात साह, मल जन्म।

0: जुग जुग अटल चावर छत्र तख दे मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी प्रेम अदब सत्कार दे नाल फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिन्हां दी पावन कृपा रहम दा सदका ये आनंद कारज संपूर्ण होए हन। आप सारियां संगतां दा धन्यवाद जिन्हां ने लंबे समय तो बैठ के श्रद्धा भावना दे नाल गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण कीते हन। भाई साहब भाई जोत रूप सिंह जी खालसा अते बीबी सिमरन कौर जिन्हां दा पहला नाम सैवरन सी उसो अमृत छक के उन्होंने सिमरन कौर नाम रखाया है। बड़ी श्रद्धा अते भावना वाले हन दोनों गुरद्वारा सेंटा कलारा सिलीकोन विखे श्रद्धा भावना दे नाल जिथे गुरु दे वजीर हन कीर्तन की हाजरी भरते हैं उथे सेवा भी करते हैं। सो सतगुरु जी कृपा करन इस तरह कृपा रहमत बनाई सक रखन। जो ये गुरमुख प्यारियो पति अते पत्नी का रिश्ता है बड़ा पवित्र रिश्ता है जे आप इस नूं समझिए प्यार वाला है क्योंकि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जिथे परमात्मा नूं मिलन वास्ते होर अनेक उदाहरणां दित्तियां हन पाणी दियां मच्छी दियां होर अनेक सब तो वध जिहड़ी उदाहरणां दित्ती है वह पत्नी अते पति दे रिश्ते दी दित्ती है कि जे इहनां दे विच जिस तरह प्यार है जे आपां उस परमात्मा दे नाल प्यार पाईए ते परमात्मा भी प्राप्त हो जांदा है। हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ ये चार अवस्था हन चार पड़ा हन। सो सतगुरु जी कृपा करन ये जो उपदेश है वह सारयां दे हिरदे दे विच वसे सुभाग जोड़ी नूं सतगुरु जी चढ़दी कला बख्शन गुरसिखी नामदान की दात बख्शन जी। सिलीकोन वैली गुरद्वारा सेंटा कलारा की सारी संगत पहुंची है जे आपां नाम लैण लगीए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि सारयां नूं इस तरह उत्साह सी खुशी सी कि जिस तरह उन्हां दे अपने घर दे विच ये विआह होवे क्योंकि गुरु घर सारयां दा सांझा है। सारी संगत ने बड़ी खुशी मनाई है बड़ा चा कीता है सारयां दा धन्नवाद जिहड़ी भी इत्थे पहुंचे हन लड़की परिवार वल्लों अते गुरु घर दे हैड ग्रंथी साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी जिन्हां जिहड़े जोत रूप सिंह जी दे चाचा जी हन उन्होंने बड़ी खुशी की। सारी संगत का धन्यवाद जी हुई भुलां की मुआफी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इतना सोहना प्रोग्राम होया है काफी देर तक आप सजे बैठे हो कीर्तन सुन के बहुत उत्साह हुलारा चढ़दी कला आ जाती है पर बेनती है कि आओ असी एक बारी फतेह की सांझ फिर फतेह नाल करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर अपने सुनी अरदास कार

एक बार फिर सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोनों परिवारों नूं एक बार फिर इस शुभ आनंद कार्ज दी लख लख वधाइयां जी। खास करके सेंटा क्लारा दी समूह संगतां जो इत्थे पहुंचे हन, प्रबंधक साहबान उत्थों दे जो पहुंचे हन, सब दा धन्यवाद है जी। संगतां दा सब तो वध धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा धन्यवाद। बच्चों नूं बेनती, दोनों बच्चे मत्था टेक के खड़े हो जाण, भाई साहब उसों सिरपा बख्शिश प्राप्त करन जी। परंतु

बिरद पयो सूज नहीं काल पहुँचियो आना। कहो नानक नर बावरी क्यों ना पजहि भगवान।

एक भगत भगवान जय प्राणी का नाहे मान जैसे सुकर सुहान नानक मानो ताहे तान।

आय बाल हुआ बंधन छुटे सब किछु होते उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सुहाय संग सखा।

दर्शत हारो होए मुदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पई हो सत संतोख विचारू। अमृत नाम ठाकुर का पै हो जिसका सबसे आधारू।

सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम।

जियो मेरे सिख सुनो पुत भाईओ मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर भाया मेरा हर प्रभ करे सब वास जियो भगत सत गुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजे बाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो करन रजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुरु भाणे अपने बहे परिवार सुदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजे मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पै नावे

हर हर चरण हृदय उर तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारी। हर हर चरण हृदय उर तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना

0: मिथ्यातन कुटुंब सुमाया मिथ्या राजोन तन माल मिथ्या रथ हस्ती असमस्त्रा मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: आस्तर।

0: की सर पर रखे,
1: अपने दास को देह बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आप पत रखे,
0: कदमित कोय न लाखे,
1: सबके सेवकों को नाम पहुँचे,
0: सबके सेवक उचते उचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया,
1: की रीमे कल रखे,
0: पसंद करे लश्कर कोट लाखे,
1: इसका

0: बसे
1: और जुका निर्भव होए बसे जिसका सातन कृपा तारी
0: सार संग जप नाम मुरारी
1: तिरपय जुके परम गवन।

0: हार त्याए
1: निरभउ जपे सगल भउ मिटे
0: प्रभ कृपाते प्राणी छुटे
1: जिस प्रभ राखे तिस नाहीं दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटे अहंकार
0: जिस जन को कोई न पो

0: जो कुछ कहना सो आपे का है।
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
0: आज्ञा पावे ता लए सबाए।
1: इस्ते होए सुना ही बुरा,
0: बुरे कहो कि ने कच करा।
1: आप ला कर तू तदनी की,
0: आपे जाने अपने जी की।
1: आप साजधारी सब साच,
0: बोध बोध अपन संग्राच।
1: ताकी गत मिद कही न जाए,
0: दूसर होए ता सोजी पाए।
1: इसका किया सब परवान,
0: गुर प्रसाद नानक एहो जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए,
0: मिलाए लाए प्रभ सोए।
1: हो धनवंत कुलवंत पदवंत,
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।
1: धन धन धन जन आया,
0: जिस पर सत्संग जगत तराया।